0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न, खुश ऐं बीरोनो जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चारनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ टिन ॾींहनि में आहे नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: प्रीकास्ट घरन जू लगरां ब्री, छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जू छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?

0: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
0: जी हा 2315525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

पता कर लोगों के दिलों को चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इट ये वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

Good Giggles are here, sponsored by Super Y Products by Aksa Cosmetics. Super Y Products by Aksa Cosmetics, जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं. और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. 11:14 जो कि पाकिस्तान का मेरे वक्त तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है. वो तमाम तो लोग जो कि हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हाँ वो सेफ सेफ जाए नहीं. बट अगर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. खुदा खैरियत मौजूद है और तब के लिए खुदा खैरियत.

Okay, जी जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और इसी के साथ हम चलेंगे आगे जी और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के टाउन से ही आप ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। ये खूबसूरती भरा खूबसूरत से सफर जो कि पूरे पूरे एक बजे तक डेली बेसिस पे आप लोग इंजॉय कर रहे होते हैं सो एग्जैक्टली आज भी करेंगे। एंड सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमेशा की तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स सुपर से भी ऊपर हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि वो लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं या अगर आपने अभी तक यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है जी, सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्राइटनिंग क्रीम आती है, सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का एंटी डलनेस फेस वॉश आता है, ये आता है टर्मेरिक ठीक है, और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का राइस ब्यूटी सोप आता है, सुपर वाइट का राइस कोलेजन एंटी एक्ने क्रीम भी आती है जी, और इसके अलावा इनका एक अदद सुपर वाइट राइस सीरम भी आता है जिसको इंक्लूड करने से, जिसको ऐड कर देने से आपके जो क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और मजीद और इनहेंस हो जाते हैं, तो ये कमाल की बात है। इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ठीक है, तो ये है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स। और जी सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम जिसको हम बूस्टर भी कह सकते हैं जी, अल्फा आरबोटीन इसमें मौजूद है, नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, वाइटामिन B3 एंड कोजिक एसिड इसमें मौजूद है, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी स्किन हो रही है डल, आपकी स्किन हो रही है बेरोनक और आपका कॉम्प्लेक्शन हो रहा है डाउन, या फिर आपके फेस के ऊपर हो रही है एक्नी, एक्नी के निशान, बहुत सारी छाइयां, ये सब कुछ हो रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन को खत्म करने वाली बात है और वो बात है जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की। सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की बातें हम आपसे पूरे पूरे एक बजे तक करते रहेंगे और आप हमसे करते रहेंगे, तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सबसे पहले बाय करना है मार्केट जाके ठीक है। अब कौन सा किस लिए बाय करेंगे वो तो आपको दो दिन में अंदाजा हो ही चुका होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है उनको अंदाजे हम लगवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी बना के आप लोग यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चलेगा। और जो कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं या अपनी स्किन को बनाना चाहते हैं, तो कोरियन ग्लास स्किन को बनाने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का राइस फेस वॉश ठीक है, तो इसको यूज करने से आपकी जो डलनेस है वो खत्म होती है, चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं और आपकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है डे बाय डे।

0: साथ साथ आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सिंपली मैसेज करना चाहते हैं, जो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे, और कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज www.facebook.com/GFM88 और जी लालकाना FM88.8। इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488। इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो जी इसके अलावा हम चलेंगे आगे और प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे एक और गाना, और वो जो एक और गाना है मैं सोच रही हूँ कौन सा होना चाहिए, और वो गाना बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छा सा गाना प्ले करेंगे।
1: पास हो मानू मैं सारी अपनी गलती, तूने ये साथ में कोई अलबी, तू कवे तेरा आज भी मैं दूँ।
0: और गाना प्ले करने जा रहे हैं जी एक और ब्यूटीफुल, एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल महेसर। इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: आशिक ॾिसी हकी मूंखे खिले पियो, हकी पुछ त छोकिरो मिली, त आशिक चयो

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अरे मैं खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आए चार रंग की खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी की लॉक करे ऐ चांदन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइन्स ऐ झिरन की घट कर ऐ रिंकल्स की घट करे सिर्फ टिन ईहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन्हें सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें।
1: हमारा दोस्त है,
0: हाँ जी,
1: हाफिज सावा डिल्लू साहब, शमी डिल्लू साहब, हाफिज जानवर में डिल्लू साहब, सर दर्द और मुस्कान साहब, और जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, और मेरे ख्याल से ये रहा आपका गाना।

0: ओके जी, एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, इसको जरा सा क्लियर कर लो सरदर्द।
1: अच्छा, अभी ठीक से आ रही है?
0: अब ठीक आ रही है। मुझे बताओ कि इतने दिन बाद कॉल कर रही हो, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो इतने दिन बाद शुरू करे ना, दो दिन से आप
0: करें। मैं इतने दिन बाद, वाकई मैं पूरे मंथ बाद आई हूँ।
1: सांस में सांस आ गई अभी आपकी आवाज सुनते।
0: अरे वाह, क्या बात है। इसी बात पे
1: आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना मिस किया मैंने आपको।
0: मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, आपको भी बहुत मिस किया मैंने। यस, एग्जैक्टली। और जहाँ रोज मॉर्निंग में आके एक मतलब कि रूटीन बन जाना, शो करना, अपने लिसनर से कनेक्ट कर पाना, तो वो रूटीन एकदम से जो है खत्म हो गई थी, या ये कह लें कि एक मंथ के लिए रुक गई थी। तो डेफिनेटली जहाँ आपने मुझे मिस किया, तो वहाँ पे मैंने अपने सब लिसनर्स को भी बहुत मिस किया। यस, एग्जैक्टली। इसी बात पे मुझे कोई अच्छा सा मिस करने वाला गाना सुना दो।
1: मिस करने वाला?
0: हाँ।
1: अच्छा, तेन
0: वाह, क्या बात है। अच्छा सरदर्द, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स कब यूज करने हैं आपने?
1: अभी तो प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया, सुन के फिर बता दूंगी आपको।
0: सुन के मुझे फिर बता देंगी? ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना है?
1: अल्लाह
0: हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी। एंड ये रहा गाना। अच्छा, मैंने इसको ना मूवी वाले वर्जन में प्ले किया है, ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह।

I'll give you a beautiful song, just like Super White Strawberry Korean Formula Beauty Cream. And this Korean formula which will give your skin ko Korean glass skin. Look, rice beauty cream which is prepared Korean formula. Super White Korean Formula Strawberry Beauty Cream. Hai, strawberry ki flavor will give 3 days visible results. Okay? So, लोगों को खाने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है अब वो लगाने में भी पसंद करें इसको और लगाएं सुपर वाइट का कोरियन स्ट्रॉबेरी फार्मूला जो कि आपको मिल जाता है सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस बहुत खूबसूरत टेक्सचर और बहुत ही खूबसूरत बना देने वाला फार्मूला पहले 3 दिन में रिजल्ट देखेंगे तो अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ग्लो के लिए बनाते हैं क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और जब लगाएंगे इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट मिलेंगे तो वो उससे भी कहीं ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट और इसके साथ अगर इसके रिजल्ट को डबल इन्हेंस करना चाहते हैं तो चीज के साथ यूज करेंगे सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश ताकि आपके जो रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएं और पहले ही 3 दिन में आप ये वाजे फर्क देखेंगे और हम साथ में गाना भी चेंज करेंगे एंड मैं सोच रही हूँ कि अच्छा सा गाना हम प्ले कर दें एंड अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे और मैंने बड़े अच्छे अच्छे गाने सर्च करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जी और रखने से मकसद ये है कि सुनाने भी है आपको तो हम प्ले करते हैं जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हियर कम्स हसन रहीम एंड नताशा नूरानी सुनेंगे इस गाने को जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक की जाने तो वापस आएंगे स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है

रतो देरो में हथियारबंदनि जी फायरिंग, पंज ॼणा क़तल, मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि टे पुट शामिल आहिनि। जैकमाबाद रोड ते हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग थी आहे। रियाज़ हुसैन घांगरो, रजब कुर्बान, बिलावल घांगरो ऐं अब्दुला बिरोही मारिजी विया आहिनि। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतोदेरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलूचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान जे माश्किल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमनी हुसैन खां लातालकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडे॒ही मीडिया मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची हुसैन जे विच में ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। चक जे कचे में पुलिस ऑपरेशन दौरान गुज़िरियल ॾींहुं मारिजी वियल मुबैना ॾुहारीअ जो लाश वारिस बिना पोस्टमार्टम खणाए विया। गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ वरियाम जतोई में ऑपरेशन दौरान शाबेक पुट लश्करी जतोई मारिजी वियो हो। पुलिस हदबंदीअ जो जवाब ॼाणाए पोस्टमार्टम लाइ लेटर जारी न कयो। वारिस औरतुनि लाश बिना पोस्टमार्टम जे खणाए वई। गंबट में आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो केस दाख़िल। मुख्य जवाबदार ताहिर आरी जो गिरफ़्तार। केस में 3 ॼणा नामज़द थियल। ऐं जमाल शाह भरसां बारड़ो वाट कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो आहे। घोट जाम खान ज़रदारी में 12 वरनि जो अहम ज़रदारी वाट कोर्स में ॿुॾी फोत थियो आहे। वारसनि मूजिबि लीगर खे मिर्गीअ जो दौरो पवण सबबि वाट कोर्स में किरियो हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़। फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
8: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
8: जी हा, 3135525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

Okay, जी, welcome back once again. आ गए वापस. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics, और आप सुन सकते हैं पूरी एक बजे तक.

आगे जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जिसमें आते हैं जी इनकी पेट्रोलियम जेली एंड फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज। अच्छा मैं ब्रेक में इसके फेस वॉशेस की रेंज को देख रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश इसमें से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं कौन सा करूँगा, क्योंकि मुझे सारे ही अच्छे लगे और पैकेजिंग इतनी कमाल की है ना, पैकेजिंग देख के ही आपका हर प्रोडक्ट पे दिल आ जाए, क्योंकि हमेशा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसी होगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त थी जी, और ऐसी पैकेजिंग है कि देखते साथ ही आपका दिल आ जाए। तो फेस वॉशेस की रेंज में इनका राइस फेस वॉश आता है, टर्मेरिक फेस वॉश आता है, इसके अलावा जी इनका कौन सा फेस वॉश आता है, इनका विटामिन सी फेस वॉश आता है, विटामिन सी फेस वॉश बड़ा कमाल का फेस वॉश, और सुपर वाइट टर्मेरिक फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, तमाम उन लोगों के लिए जिनका फेस ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन उस स्किन को कहा जाता है जिनका जो टी जोन एरिया है फेस का, यानी कि नोज से लेके कुछ फोरहेड का कुछ चिन तक, तो ये टी जोन एरिया कहलाता है जी, और ये आपका ऑयली है और बाकी सारा ड्राई है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, इसमें आपकी ऑयली स्किन भी आ गई, इसमें बाकी सारी आपकी ड्राई स्किन आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी। अगर आपका कुछ फेस का हिस्सा ऑयली रहता है और कुछ ड्राई रहता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, और जिन लोगों का पूरा फेस ही ऑयली रहता है तो उनकी स्किन टाइप है ऑयली। ठीक है, तो दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और ऑयल कंट्रोल करेंगे इससे और फेस को इससे वॉश करेंगे, दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे और

0: देखेंगे कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश को यूज करने से क्या फायदे आपको मिल रहे हैं. तो इसके जो फायदे हैं ना, एक तो ऑयल को कंट्रोल करेगा, एवोकाडो की खूबियां इसमें मौजूद हैं, आपके जितना भी मतलब के फालतू ऑयल होगा ना चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगा, और क्या करेगा, ये आपको 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलता है. बहुत कमाल की पैकेजिंग है जी. और इसके अलावा वाइटामिन सी फेस वॉश, जैसे कि मैंने कहा, उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का मसला है, पिगमेंटेशन का इश्यू है, और पिगमेंटेशन नहीं जाती है, खत्म नहीं होती है, तो इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट मौजूद है, वाइटामिन सी एक्सट्रैक्ट मौजूद है, लेमन एक्सट्रैक्ट मौजूद है, और नीम एक्सट्रैक्ट मौजूद है जो कि वाइटामिन सी को इसमें बनाते हैं जी. और वाइटामिन सी जो कि आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रहेगी, तो इसको यूज करने से आपकी पिगमेंटेशन कैसे जाती है वो आप देखेंगे. ठीक है, तो दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे वाइटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करेंगे और फिर अपनी पिगमेंटेशन को खत्म होता हुआ देखेंगे डे बाय डे. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, इनका बड़ा कमाल का और बड़ा क्यूट सा फेस वॉश है. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्यूट लगते हैं जी, और एंटी एक्ने भी है ये. स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है जी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देता है. अगर इसके साथ इसकी क्रीम भी यूज करते हैं तो सोने पर सुहागा. और इसके अलावा जी, सुपर वाइट की टर्मेरिक ऑयल कंट्रोल, एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, टर्मेरिक जो है इसमें मौजूद है, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट और टर्मेरिक की बहुत सारी चीजें, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं जी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, फ्राइनेस को बढ़ाने के लिए. तो क्या कमाल के फेस वॉश इसके रेंज है. और लास्ट में हम बात करेंगे जी सुपर वाइट की राइस कोलेजन फेस वॉश की. सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश जिसमें कोलेजन मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है, राइस की इतनी जबरदस्त किस्म की खूबियां मौजूद है जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना देगी कुछ ही दिन में, ठीक है. सर्दियां आ रही हैं, पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट वालों की, और सुपर वाइट वाले बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में पेट्रोलियम जेली भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और एक बड़ा सा जार उसका बाय कर लें क्योंकि सर्दियों में इसकी भरपूर जरूरत आपको पड़ने वाली है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 के ऊपर. अच्छा, मैं सोच रही थी कि 2 दिन से हमने टंग ट्विस्टर नहीं खेला, तो हम टंग ट्विस्टर आज तो नहीं खेल, कल से खेलेंगे हम. एंड कॉल्स आप लोगों की लेंगे, मैसेजेस आप लोगों के इंक्लूड करेंगे, और कमेंट्स आप लोगों के इंक्लूड करेंगे. शाहमीर लगारी हम सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सांगर से, शो जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. अब्दुल गफ्फार रान हमें सुन रहे हैं माइनर मेलसी से, थैंक यू. हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर मोहम्मद का किस हमें सुन रहे हैं, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ आपकी कास्ट, पहली दफा रीड कर रही हूँ, सॉरी. अब्दुल रजाक कुंबर हमें सुन रहे हैं, श्री रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, मुश्ताक अहमद कुंबर हमें सुन रहे हैं, गुलाम हुसैन अबरू लिसनर हमें सुन रहे हैं लाड़कानों से. ओके, कॉल लेते हैं जी. सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड, इस बात को जहन में रखते हुए कॉल को करेंगे. और कॉलर मौजूद है जी. नेक्स्ट, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन किधर से?
1: बाजी मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, सलाम कंदरा से.
0: मोहम्मद आलम कैसे, ठीक ठाक?
1: दुआ दुआ अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र हमारे का एहसान है बाजी.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: नहीं, दूसरा कल की थी मैंने,
0: दूसरा चक्कर कॉल की है.
1: हाँ जी जी.
0: अच्छा, तो मुझे बताएं कि कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: बाजी ये प्रोग्राम है जिंदगी गुलजार है.
0: जिंदगी गुलजार है, किसके तामुन से है
1: वो? सुपर वाइट
0: के तामुन से है. ओके, तो मुझे बताएं कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को कब लेकर आ रहे हैं?
1: जल्द इंशाल्लाह खरीद करेंगे.
0: जल्द खरीद कर लें, ऐसा ना हो कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट सुपर से ऊपर चले जाएं.
1: नहीं,
0: और आपका हाथ ना पहुंचे वहां तक. चलें ठीक है. ओके, और किस कहेंगे
1: बाजी? को एक नगमा सुनाओ.
0: एक गाना सुनाएं? मैं आपको 2 गाने सुनाऊंगी, बताएं.
1: चिट्ठी जरा सही लिखे नाम लिखे.
0: ओके जरूर सुनवाते हैं आपको, जरूर सुनवाते हैं. थैंक यू.
1: बड़ी मेहरबानी. जो सुनते हैं सारे को सलाम, आपको सलाम.
0: ओके थैंक यू सो मच हाफिज जी. और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे 03000 11348 के ऊपर. हेलो
2: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम. कौन कहने से?
2: आदिमा कुर्बान अली खास के लिए बुलाया, गोटा जी गुलाम खास के लिए लगी झंडो भरिया.
0: कुर्बान भाई कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: सुपर जी क्रीम जी दावन का प्रोग्राम
0: सुपर वाइट बिल्कुल सुपर वाइट के दावन से प्रोग्राम सुन रहे हैं. प्रोग्राम कौन सा है?
2: जिंदगी गुलजार.
0: ओके जी वेरी गुड वेरी नाइस. मुझे बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे सुपर वाइट का, कब करेंगे, जल्दी से कर लें.
2: हाँ बिल्कुल ऐसा सुपर वाइट के को ना वो इंशाल्लाह आठ बाकी दिन में इस्तेमाल करना.
0: ओके जी ठीक हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे?
2: ये काठरी का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी काल कलाशारी अजीज जरवार अजीज सोलंगी पे जेके बुधन पर सब सलाम मोहब्बत जब भी तरह का गुलाम रही बलोच चार्ली लुंडू सलाम मोहब्बत.
0: ओके जी थैंक यू सो मच. कॉल हो चुकी है जी ड्रॉप एंड हम करेंगे हम चलेंगे आगे. ठीक है आगे चलेंगे एंड हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. काफी दिन बाद ये सॉन्ग मैं प्ले करूंगी एंड उसको हम सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट पराज बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. ग्लो विद अस.

0: इट्स
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अरे नहीं, खुश और बेरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर पीओ किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे आई चार रंग की खूबियों जल्द में फाइन लाइन एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनका गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
11: सुनते रहो GFM 90.4।

Okay, जी, welcome back once again. आ गए हम और इसके अलावा जिंदगी गुलजार है sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इतने खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, इतने ज्यादा खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स के पहले कभी इतनी ज्यादा खूबसूरती आपने कभी इंजॉय नहीं की होगी अपनी लाइफ में. खूबसूरती भी एक ऐसी चीज है जो कि इंजॉय की जाती है. या खूबसूरती का ताल्लुक, मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भी होता है. और कोई कितना ही आपको क्यों ना कह ले कि खूबसूरती मैटर नहीं करती, दिल अच्छा होना चाहिए. अगर कोई ये बंदा बोलता है ना बात, वो झूठ बोलता है, ठीक है. तो उस पर आपने यकीन नहीं करना. खूबसूरती खूबसूरती होती है, ठीक है. तो खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत कैसे बनाएंगे, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करके. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी क्रीम, फेस वॉशेस की इतनी ज्यादा जबरदस्त रेंज जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया. अच्छा, इनके सोप्स भी आते हैं बाय द वे. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आप इससे फेस को वॉश करने के साथ साथ आप इससे हैंड्स एंड फीट्स को भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है. और आप इसके साथ फ्रेश भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो सर से लेके पांव तक खूबसूरती आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है. ऑन द वेरी सीरियस नोट, अच्छा, इसके अलावा जो इनका बूस्टर आता है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, इसको आप सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. इसको सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी कोरियन फार्मूला ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. मकसद ये कहने का कि आप सुपर वाइट का कोई भी मतलब इसकी कोई भी ब्यूटी क्रीम आप यूज कर रहे हो, आप इसका कोई भी बूस्टर उसकी क्रीम में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं. आपको जिस तरह रिजल्ट चाहिए, लाइक अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप फिर या तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे सुपर वाइट वालों की, या फिर सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी सोप ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और उसमें फिर बूस्टर को ऐड कर लेंगे, ठीक है. तो फिर ये है कि कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी. इस तरीके से आप इस बूस्टर को यूज कर सकते हैं अपनी क्रीम्स में ऐड करने के बाद. अगर आप ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं तो सुपर वाइट ऑयल फ्री स्किन के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको सुपर वाइट ब्यूटी सीरम को, या फिर सुपर वाइट राइस ब्यूटी सीरम को. इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जब आपको मिलेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई जो मैं कुछ बता रही हूँ उससे कई ज्यादा हकीकत में इसके रिजल्ट्स हैं. बहुत खूबसूरत. कॉल कर सकते हैं आप लोग, मुझे कॉल कीजिए 03000113488.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे 03000113488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ वो तमाम तो लोग जो कि डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं करेंगे, जिन लोगों ने कभी कभार कॉल मिलाई हो वो कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे आप सब एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट गाना भी हमने प्ले कर दिया है, बाय अब्रारुल हक।
1: हाय रूप तेरे दे जो नजारे,
0: साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं जी। अच्छा, हमें कमेंट किया है फरवा गुल ने, फरवा गुल लिखती है कि शो बड़ा जबरदस्त सुपर डुपर है, ब्यूटीफुल है, सुपर डुपर क्यों नहीं होगा, सुपर वाइट के तामून से है, तो सुपर वाइट के तामून से होने वाला शो सुपर डुपर होगा। अच्छा, फरवा गुल कहती हैं गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आपको न्यू शो में आपको मुबारक, किस बात की,

0: मंडली।
1: कॉलर मौजूद है मेरे साथ लाइन पे। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? पहली दफा कॉल कर रहे हैं भाई
2: जी?
1: पहली दफा कॉल कर रहे हैं? ओके, केड़ो प्रोग्राम बुधो था?
2: जिंदगी गुड़गा
1: कहेंजे था मुनसा
2: यो नौ को समय आए
1: बिल्कुल यो यो नौ प्रोडक्ट तवां जे लाए असा वठी आया आयो
2: वठी आया रे तमाम समय गाल के
1: ता तवां नालो त खड़ी दिखारियो नौ प्रोडक्ट सुपर वाइट नालो आ छा नालो आ
2: सुपर वाइट
1: सुपर वाइट कडे यूज कंदो ओके जरूर यूज कयो ऐं यूज करे असां खे जरूर ॿुधायो
2: ठीकु आहे
1: ॿियो कुझु चवणु चाहींदो ओके ज़रूर तव्हांखे ॿुधाईंदा थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अला हाफ़िज़ आज काफ़ी दिन बाद में सिंधी बोल रही हूं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बोल रही हूं अच्छा हाँ मैं सोच रही थी कि मैंने एक गाना प्ले नहीं किया मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये गाना प्ले करेंगे शो में एंड द सॉन्ग कॉल्ड पैब्लो

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: कॉलर में चल नेक्स्ट लाइन पे मौजूद होंगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अयाज अली भुट्टो भाई, कैसे ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा है?
2: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं? ओके जरूर करें, बस सुपर वाइट होना चाहिए। अच्छा और कुछ कहेंगे?
2: राशिद भुट्टो।
1: अच्छा सलाम दे रहे हैं। ओके खत्म हो गए। ओके जी, ये एक एक मिनट का गैप लेके ना दोस्तों को शामिल करने से बेहतर है जल्दी जल्दी बोला गया। वैसे ये सलाम दुआ देने का जो ये ट्रेंड है ना, ये काफी पुराना हो चुका है, तो कोशिश किया करें कि कुछ प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? बहुत कम लोगों को कॉल पे आने का मौका मिलता है, तो इस मीडियम पे आके इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया करें, कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? जो कभी किसी ने ना की हो। और इसके अलावा जी आगे चलते हैं, कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, और कमेंट्स और मैसेजेस, और साथ में हम फिर से गाना चेंज करने का सोचेंगे नहीं बल्कि करेंगे, एंड हम गाना प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट में हम एक ही गाना प्ले कर सकते हैं, और मेरे जाने का वक्त भी जो है ना करीब आ रहा है।

0: के सावधी सावधी।
1: आगे जी इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे फिर वो सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम हो, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी कोरियन फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम हो, या फिर सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम हो, या फिर सुपर वाइट की कोजिक एसिड राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम हो, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम, और इसके साथ साथ इनके बहुत सारे फेस वॉशेस की अच्छी रेंज और सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, और सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम भी आती है जी इनकी, इनके सीरम्स भी आते हैं सुपर वाइट राइस सीरम और सुपर वाइट ब्यूटी बूस्टर, तो ये आप किसी भी क्रीम में इनकी एड करके यूज कर सकते हैं। साथ में इनके फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज है, अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। फेस वॉशेस की रेंज में से कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश एंड देन उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करके खूबसूरती को अपना मुकद्दर बनाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लव सम पर थिंक हाई, सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़।

हथियारनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। मारजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ब॒ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ब॒ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान घांगरो शामिल आहिनि। बिलावल घांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुल्ला बिरोही बि गोलियुनि जो खाज बणजी विया आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतोदेरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे। मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिले जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो। हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जिमनी होसिन खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर होसिन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडेही मीडिया मूजिबि ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राबची होसिन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालुकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशनि खे रद्द कंदे साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो आहे। अॻवाननि चयो आहे त सिंध जे वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतज़ामी बुनियादनि ते विरिहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
7: जी हा, 2315525786।
8: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

आगे से प्रोग्राम करने के फौरन बाद ही जैसे हम आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए आप भी खूबसूरत हो जाए क्योंकि खूबसूरती पर आपका भी हक है और ये आप डिजर्व करते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

खूबसूरत ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नाच जो कि आपने यहाँ पर सुनी, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई टेंशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े से तो आपके खर्चे कराए ना, ऐसे कैसे चलेगा। अगर आप भी थोड़े से खर्चे करना चाहते हैं और खर्चे भी वो वाले बाबा चाहना है ना, वो खर्चे कहो जेको सजायो वे छो तो कई मरत ये थी असा खोड़ सारा अड़ा खर्च कर वेंदा जेके अजाया थी वेंदा है। जदि ब्यूटी प्रोडक्ट की गाल इंदी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खोड़ सारा प्रोडक्ट अड़ा अस इस्तेमाल कर स्टार्ट करना है जेके भई नालो तो वो हों पर दर्शन छोटा हों बुध अव न। सो बिल्कुल वैसे ही अगर तीरो मिली रो है उल्टो तवे चेहरे की स्किन खराब थी वही है तो तवे करो है तवे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करो है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में तवे बिल्कुल भरपूर पूरे प्रोग्राम में बुधा वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तवे क्या किथा परचेज करे सको था या वरी पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था, यो भी बिल्कुल तवांके बुधायो वेंदो। पर अज जे प्रोग्राम जो टॉपिक छाए इयो सब का पहिरे तवांके बुधायूं। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो सवाल होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा ना फिर बोलेंगे भाई हमने तो सुना ही नहीं, समझ ही नहीं आया सवाल। सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और इस तरह के आप मुझे बताइए वजन नहीं उठा सकते। हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। हाँ जी, ये क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामली प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। अगर आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल ही, तो मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जहां जहां तक हमारी आवाज धक्के खा रही है, सब लोग मुझे बताएं कि कहां कहां से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हो, जरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। हाँ जी भाई साहब, और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। अगर आप भी चाहते कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपको जो नंबर बताऊंगी ना उनके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है। नंबर्स के ऊपर राबता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो जाए, या फिर ऐसा वाला सीन है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस नंबर्स के ऊपर राबता कीजिए और नंबर सुनने वाले हैं जनाब 0332738439। बड़ी 332 है 73 84 309। नंबर आए 0312502590712 50 पंजवीह 970। ये नंबर सांझे के तमाम डायल करें पांचे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। सो अवेलेबल करायो आई बाबा तारिक भाई भी असि पोस्ट से वेठो अव, तारिक भाई तवाज लाए जो है अवेलेबल कराए छी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश, बस तारिक भाई के फोन तो हणो। तारिक भाई चंदो असा ताबेदार। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर बाबा अवेलेबल कराए छूं था, तो न तवाज एरिया में ना ही

अवेलेबल थी त बाबा ॿुधायो नी ॿुधाईंदा न त ख़बर कीअं पवंदी त तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अञा कोन मिले थी ऐं मिले नथी त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां इस्तेमाल बि न कंदा हूंदा सो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो अच्छा किंज़ा यहां पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूं आप बताएं कैसी हैं आप अपनी अम्मी के साथ मिलकर हमारा प्रोग्राम सुनती हैं बहुत शुक्रिया अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रही हैं गुड आफ्टरनून सिद्रा मैम गुड आफ्टरनून टू यू अच्छा अली रिना भाई कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम हो गया फरवा गुल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस टेक केयर आप ही अभी आपकी तबीयत कैसी मेरी तबीयत ठीक है जी आप बताएं आप कैसी हैं कहती हैं कि आप ही अर्ज किया है रेजा रेजा ही ख्वाब मेरी आंखों में कैसे कह दूं कि गम नहीं होता कोई शिकवा नहीं मगर मोला क्या करूं दर्द कम नहीं होता अल्लाह साईं तव्हांजो दर्द घटि करे छॾींदो बाबा अल्लाह खां दुआ घुरो और फ़क़ीर शाह शेख हमारे साथ मौजूद दीदी लाड़काना जी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया ज़ैन अली लिखते हैं कि खूबसूरत है चांद भी मगर वो ज़मीन ज़ादी अलग ही मयार रखती है फॉर यू सिडो थैंक यू वेरी मच ज़ैन और लिखते हैं कि कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले आए हाय और आपका डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या ख्याल है अच्छा यहाँ पर हमारे साथ फरवा की दी यहाँ पे गाना बिल्कुल आपके लिए लगाते हैं और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है गुड आफ्टरनून मैम आरजे नाइस होस्टिंग मैम आरजे थैंक यू वेरी मच सर

0: ब्रश ऐं बीर न थी सघे हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डस्ट स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चारनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अमर सिंध जे सिंध में हिकु चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियणु औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियणु कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
1: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

या फिर हम कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि भाई आपकी जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना, वो आपसे कहीं गायब हो जाते, दूर हो जाते, और आपकी जो स्किन है वो खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो कोई भी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप जाते ही परचेज करने तो आप इजीली जाइए, परचेज कीजिए। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको नंबर जो बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें, ताकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सके। उनके अलावा अगर तुम्हें चाहिए था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा इस्तेमाल करण चाहूँ था, पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कड़ा फायदा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब फायदा अगर माते गण वेहान है तो बाबा राधे थी वेंदी, पर चलो थोड़ा घना तांके बुधाई सजंदी चाहे याद करना। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीजें जो है ना बेसिक सी मालूमात आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना सबसे पहली बात आप लोगों को जो बताने वाली वो ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये फलां प्रोडक्ट लगाने से कहीं हमारी स्किन तो खराब नहीं हो सकती। नहीं हो सकती बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड वाइटनिंग फार्मूला है। मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना वो ऐसा होता है कि भाई उसे डॉक्टर्स ने बनाया होता है। तो ये घबराने वाली बात तो जरा साइड पर रख दीजिए कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम नहीं लगा पाते हैं। आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। और बात आती है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर क्या चीजें ऐड की गई हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और जैसे हम आप लोगों के साथ जिक्र करते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, तो ये चीज भी आप जरा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को फेशियल जैसा रिजल्ट मिलता है। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम तो है ही है, व्हाइटनिंग फार्मूला तो है ही है, लेकिन ये एक फेशियल वाला इफेक्ट आपके चेहरे पर लाने वाला प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे तो इसे वाकई फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आपको फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है ना, बिल्कुल यही चीजें आपके चेहरे पर जो है ना वो फेशियल वाला इफेक्ट लाने वाली है। क्योंकि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ये महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर एड की जाती है। तो भाई आप भी लकी हैं कि आपके पास कोई ऐसा फाइनली प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी खूबसूरती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ आपको इस तरह के रिजल्ट्स देने वाला है जो कि आप कहीं शायद किसी और प्रोडक्ट से हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घरों में शादियां हो रही हैं या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको परफेक्ट वाला रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। 2-in-1 फार्मूला, मेडिकेटेड फार्मूला, भाई और क्या चाहिए आप लोगों को, ना शुक्रो। इतना अच्छा, इतना कमाल का प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। और खूबसूरती तो हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ क्रीमें लगा रहे होते हैं। क्रीमें लगाना इनफ नहीं होता, आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना अच्छा सा फेस वॉश भी लगाएं अपने चेहरे के ऊपर। अगर आपके पास डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कामों की वजह से प्रॉपर अपना और अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते, तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप काम में इतने मसरूफ हैं, तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अप्लाई कर लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों चीजें इनफ है भाई आपकी ब्यूटी केयर में इजाफा लाने के लिए, आपकी खूबसूरती को। और जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करते रहेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी बात है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने जबरदस्त, इतने कमाल के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है, तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से और परचेज कराइए, और इसी के साथ साथ खूबसूरत होते जाइए, क्योंकि खूबसूरती के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब,
तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा है। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। आज भला मुझे आप लोगों की रश कम क्यों नजर आ रही है। जल्दी जल्दी से प्रोग्राम पर जो है ना वो हल्ला बोलिए और जरा हाँ जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना तो ये फायदा हो जाता है कि भाई हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा लोगों को हम इजीली बता पाते हैं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। उनके अलावा हमारे पास ही आप लोगों के मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर चाचा खालिद कहते हैं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही सही। ये क्या था चाचा, चलिए आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और हमारे साथ फहीम भाई मौजूद है, कहते हैं तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू वहां ते किरे थी अई बार थी बने थी। फहीम शेख लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम याली मदद, अदा केड़ा हाल आहिन सफा बल्ली। टॉपिक जो जवाब दिनो आहे ओके। अच्छा अलीशा लिखती है की जिंदगी ये है की तुम सामने रहो ताकि मैं जो ताकि मैं जी सकूं। अच्छा सही सही सही सही सही, हाँ भाई पसंदीदा इंसान की बात ही कुछ और होती है। और चाचा कहते हैं कि क्यों धिक्के खा रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज ही तो है जो सहर तारी करती है बेटा सिड्डू, अल्लाह जाए बुदा मनवा दिल जाए कया ना। और किशोर भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं अदा आज लगे तो अवां के जुकाम आए, हाँ थोड़ा थोड़ा मुखे भी महसूस थे तो ये आवाज थोड़ी अजीब आए मुझे, पर कोई बात नहीं है जी, आप गुजारा कर लीजिएगा। और ये फर्ज मोहम्मद फर्ज राहिब अली खोसू भाई हमारे साथ है। फर्ज राहिब अली खोसू भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं अदा एकड़ो सॉन्ग आए पितकड़ो गानो बिल्कुल तांजी फरमाइश ते हलायो वेंदो आई तवां पांजी सीट ते बैठा हो जो। फरवा कहते हैं कि आप डीपी देख कर भी नहीं समझे कोई। अच्छा ओके जी ओके। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दोनों आंखें खोलकर बैठना पड़ेगा चले दोनों आंखें खोलकर बैठते हैं। अबू हनीफ अल बलूची हमें सुन रहे हैं कि कहते हैं कि लोगों ने मांगा रोज खुदा से कुछ नया, एक हम तुझे एक हम थे कि तेरे ख्याल से आगे ना जा सके, आंसर है आपने दिया है जवाब जी ओके हो गया। और फरवा आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया, ये भी ठीक है जी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, बिलेर सोनो खान लाशारी मिरपुर खास से कहते बाजी सिदरा टॉपिक पानी, ओके ओके ओके आगे नहीं पढ़ेंगे वरना लोग जान जाएंगे कि आज के सवाल का जवाब क्या है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जिसका कोई वजन तो नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे ये जरा इस सवाल का जवाब बताइए। मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ, बड़ा ही अच्छा जबरदस्त सा गाना है। गाना सुनते और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताइए ना मुझे, और आगे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे ही नहीं ये भी बताइए ना मुझे।

हाँ जी, इतना भी रूठना सही नहीं होता। वैसे ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि औरत जो होती ना, वो मतलब ऐसा होता है कि बार बार रूठ जाती है, और इस वजह से रूठ जाती है कि अगला इंसान मुझे मनाएगा, लेकिन जब वो रूठती है ना तो वो अपनी अहमियत खो देती है। क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती ना, वो जो बात बात पर रूठ जाती हैं और ज्यादा रूठ जाती हैं, वो अपनी अहमियत ही खो देती हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो भाई ऐसा इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जो बात बात पर रूठ जाए। तो ज्यादा रूठना, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी पर भी सूट नहीं करता। तो मत रूठा करी और खास करके भाई अपने पसंदीदा इंसान से। ओके, तो इसी बात पर एक और बात भी याद आ गई कि भाई मुझे ये लगता है कि इंसान के किरदार की बस सिर्फ दो ही मंजिलें होती है, या तो वो दिल में उतर जाता है या तो वो दिल से उतर जाता है। मुझे और चीजों के बारे में पता ही नहीं। या तो एक इंसान दिल में उतर सकता है या तो फिर दिल से उतर सकता है। आप बताएं आपको क्या लगता है। हाँ जी, भले रुसे रुसण वारा मानू वैसे भी थोड़ा घट वर्णदा है। वासु भाई कहते हैं कि मुझे प्यारी अदी सलाम वालेकुम अस्सलाम वलेडी सलामत केड़ा हाल है सबा खुश आई सब मजे में ता पांजा हाल हवाल दियो। और तारिक भाई लिखते हैं कि सजाद अली रुस्तमानी मादली से अच्छी कस्टमर ही हमारे डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं। क्या बात है भाई, सजाद अली रुस्तमानी भाई मादली से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं, जनाब ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए, और यकीनन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो क्या ही कमाल का है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अब ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसके इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। आपको मिलती है खूबसूरती, आप हो जाते हैं हसीन, और लोग आपसे पूछते हैं बताएं तो ये क्या कमाल है कि आप इतनी खूबसूरत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आप जवान दिखते जा रहे हैं, आपके चेहरे के रिंकल्स, फ्रेकल्स, क्रेकल्स, ये सब चीजें खत्म होती जा रही है। तो आप उन्हें बताइए कि जनाब की ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। अगर आप नहीं बता रहे तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का एड्रेस बता दीजिए। वो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाए रहेंगे या फिर नहीं मुझे बताइए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, वो भी अब अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आपके एरिया में रहता है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए और परचेज करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? शो तमाम नाइस है, सॉन्ग कल शाम धारे मां दिसांदी तमाजा गाना मुखे मिली वया या लिस्ट में बची वही जगह तो तमाजे लाइ बिल्कुल हलाए वठना से। आई क्या कहते हैं कि डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आसिम लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, मजहर लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अल्लाह बचायो मकसूद अली लगारी। ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून बुआ जी, हम भी आए हुए हैं इस प्यारी सी महफिल में आपकी स्वीट सी वॉइस से लुत्फ अंदोज होने के लिए। अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या लिखा है। वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। वासु भाई कहते हैं दी सिडो प्रोग्राम जबरदस्त चलता पाए, थैंक यू प्यारा भा। परवा कहती है कि आप ही, हाँ हाँ मुझे पता चल गया,

क्या बात है जी, जरा आ राहों में मेरी, उसको बताना आज चाहता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी लगा लीजिए। और चाचा कहते हैं कि हाइलोरोनिक क्या है? हाइलोरोनिक एसिड सीरम है, एक सीरम होता है, और जैसे सीरम्स आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं ना, जैसे विटामिन्स के सीरम होते हैं, बिल्कुल वैसे ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिव है। तो वो आपके लिए हमने डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर एड कर लिया है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, और है भी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हसरात खवातीन, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और फरवा आपकी पसंद का गाना लगाते हैं जी, आप हमारे साथ जरा बनी रहिए। और मोहम्मद जमान भाई कहते अच्छा हुआ रश कम है, आज हम गरीबों की पसंद भी चलेगी। गाना तो बताएं कौन सा सुनना चाहते हैं। वासु भाई कहते अदी से डो सुभाने मुझे कबूतरन जी कबूतर आइन भाई भाई शोक अजीब हुआ है, इंजॉय करो पांजी जिंदगी के। और फलक अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, लिखा है खामोश लबों पर भी मोहब्बत का असर है, आंखों में छुपा एक हसीन ख्वाबे सहर है, न चांद की ख्वाहिश न सितारों की तमन्ना, बस एक तेरा साथ हो और कुछ भी न मांगो। कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि बिछड़ भी जाएं तो उम्र भर याद आते हैं, हमने तो मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लिया, लोग समझते रहे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं, तेरी यादों की खुशबू से महकता है दिल, तो दूर है मगर फिर भी धड़कता है दिल, कभी फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, हम आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं। ओके जी, ये तो बढ़िया हो गया। और मुझे बताएं जी, स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं? अलीशा कहती है कि अच्छा अलीशा आपने गाना लिखा है, कहती डेडिकेट माय ब्रदर सदाम हुसैन चांदियो। ओके अलीशा। मधोश भाई लिखते हैं कि अदी ही गानो हलायो खिली अदमा ॾिसां थी मिलियो गानो त हलाए वठूं था। किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाण चवण इहो तव्हांजो कॉमेंट मूंखे समझ में न आयो अदा, एक्सप्लेन अस प्लीज। अच्छा फहीम भाई कहते अदा असांजो गानो प्ले तव्हांजो गानो थर्सडे जे प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में हलायोसीं, तव्हां ॿुधी वठिजो ठीकु आहे। और गुल यासीन नाज़ में सुन रहे हैं, आप को प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद कहते हैं। जी दिल इतना भी पागल नहीं होता जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है, समझा हुआ है दिल को। दिल तो बेचारा ऐसे ही सोचता होगा कि मेरा काम तो सिर्फ खून पहुंचाना है, लेकिन ये लोग मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहे अगर दिल अपना असली काम छोड़कर आपके बताए हुए कामों पर चले तो सोच लीजिए कितनी फसाद हो जाए। सारे दिल का जो काम है उसे बस अपना काम करने दिया करें, उसे रिलैक्स रखा करें, सुकून में रखें, ताकि आपकी बॉडी पर खून जो है ना वो सही तरीके से पहुंचता रहे। और बेचारे दिल को ज्यादा तंग मत किया करें। और यहाँ पर टाइम हुआ है जी, जरा हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु थींदो. ज़रियनि मूजिब अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि. पीटीआई वानी जे इस्पताल मुंतकिलीअ जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो. हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो. अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई. ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ यमनी हुसैन खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी. ईरानी परडेही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राबतनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी. परडेही मीडिया मूजिब ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राबची हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालुकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राबतनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
5: सुनिए

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6
2: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز

वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो आपकी स्किन के लिए कितना और क्यों जरूरी है। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप हमेशा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने मिलकर तैयार किया है। तो अगर आप भी कोई ऐसा लाइट वेट सा फार्मूला लगाना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी हार्श से केमिकल एड ना हो, बस नॉर्मल सा फार्मूला हो और मेडिकेटेड फार्मूला हो, ये तो भाई बहुत जबरदस्त बात हो जाती है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको रिजल्ट भी दे जना बड़ी कमाल के शानदार, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट जो मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2 रातों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, और पूरे पाकिस्तान में जब आप देखते हैं ना कि भाई इतनी सारी क्रीमें मिल रही होती हैं, जो इतनी सारी क्रीमें होती ना उनमें सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स का जो ना वो एड किया गया है, डाला गया है। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं क्रीमों में से एक है कि भाई इतना प्रीमियम फार्मूला आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, तो इससे भरपूर फायदा उठाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, क्योंकि जनाब खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा, आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हुई ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन को बनाइए ज्यादा खूबसूरत, आसान, और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि जब भी आप स्किन के करने लग जाते हैं ना तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो अपने चेहरे पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, या फिर अगर आप अपने कामों में इतना मसरूफ है, आजकल के दौर में तो भाई वैसे ही लोग बहुत ज्यादा मसरूफ है, उनसे पूछें आपको क्या काम है तो वो बेशक 3-3 घंटे रील्स देख सकते हैं लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो इस भाग दौड़ती दुनिया में अगर आप भी अपने चेहरे को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ख्याल रखने के साथ साथ चेहरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बस इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई करना हो जो कि सिर्फ और 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दे दे, तो भाई आप लाजमी ट्राई करके देखिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसे भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, और डी स्किन का फेस वॉश ये तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि जब बहुत से लोग आकर मुझे ये कहते हैं ना कि बाजी असा क्रीमू नायू वणंदा, तो बाबा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सको था छो, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हन के डॉक्टर्स ठायो आहे, तो तुम दिल खोले करे अखियूं बूटे करे लगाए सको था, ऐं डी स्किन जो जो फेस वॉश आहे ना इहो तुम हर उम्र में भी लगाए सको था, ऐं तुम जे घर जो एक फर्द लगाए सके थो, ऐं डी स्किन जो फेस वॉश आहे ना इहो तुम स्किन के हमेशा हाइड्रेट रखंदो आहे, मॉइस्चराइज रखंदो आहे, ऐं तुम स्किन ते जेका ये गंद अची वेंदी आहे, जमा थी वेंदी आहे, या पॉल्यूशन थी वेंदी आहे, तव्हां ॿाहिरि साइड ते कोई वर्क कंदा आहियो जंहिंजी वजह सां तव्हां पंहिंजी चेहरे खे घड़ी घड़ी वॉश न करे सघंदा आहियो, या वरी तव्हां हिकु दफ़ो टाइम ते वॉश करे सघो था, त तव्हां डी स्किन फेस वॉश सां पंहिंजो चेहरो अगरि वॉश कंदा त तव्हांजी स्किन जे अंदर ताज़गी अची वेंदी, तव्हांजी स्किन ते निखार अची वेंदो, ऐं तव्हां महसूस कंदा त वाकई तव्हां कुझु सुठो इस्तेमालु कयो आहे। ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न की तव्हां 3 खां 4 मरतबा अप्लाई करे सघो था, सुबुह जो लॻायो, मंझंदि जो लॻायो, ऐं राति जो लॻायो, राति जो त लाज़मी लॻाइजो, राति जो फेस वॉश करे ऐं पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे जॾहिं अप्लाई कंदा न पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे, ही ॿई चीज़ूं तव्हांजे खूबसूरत

कुर्ती में चार चंड लगाइण वारियूं आहिनि। सो तव्हां बि ट्राए करे सघो था, हर स्किन जे हिसाब सां तयार थियल आहिनि। अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव बि आहे, कोई बि हिन महिल ताईं प्रोडक्ट अगरि तव्हांजी स्किन ते सूट नाहे करे सघियो, त बाबा डी स्किन प्यूरी क्रीम आहे न, डी स्किन प्यूरी क्रीम जिंदाबाद, जियो करे। और जनाब, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूरी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसका भी हल आपको बता रही हूँ कि डी स्किन ब्यूरी क्रीम को आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। आप बस नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, जो नंबर्स आपको प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ। पहला नंबर ये जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970 ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे इज़ीली पंहिंजे करे बि जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा, इस्तेमाल कंदा हलो, तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो बाबा, तव्हां बि डिज़र्व कयो था हिकिड़ो सुठो प्रोडक्ट। सो तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं हा, अगरि तव्हां इहो सोचो था त बाबा असां सिटी वञी जॾहिं वेंदासीं शहर त वठी ईंदासीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ईअं सोचो न लाइ कॾहिं तव्हां शहर वञो। इन खां सुठो आहे त तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए छॾियो। अगरि ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहे, पर डी स्किन जो फेस वॉश अञा ताईं कोन मिली रहियो आहे, त उन जे लाइ बि तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन जो फेस वॉश बि अवेलेबल कराए सघो था। सो ही ॿई प्रोडक्ट्स तव्हां इस्तेमाल कयो, गॾु इस्तेमाल कयो, ऐं पंहिंजे चेहरे जी जेका ख़ूबसूरती आहे न, उनखे वधंदड़ ॾिसो, ऐं तव्हांजी यकीनन दिलि ख़ुशि थी वेंदी, असांजी बि दिलि ख़ुशि थी वेंदी जॾहिं असां पंहिंजे सोणे लिसनर्स खे सोणो थींदो ॾिसंदासीं, वधीक सोणो थींदे ॾिसंदासीं। सो तव्हां ट्राए करे ॾिसजो, ट्राए करण जा त भला पैसा कोन्हनि, हिकु दफ़ो वठी अचो, इस्तेमाल कयो, पोइ कलर ना टुटियो अलाए कहिड़ी अदा चयो न त भई मां हीअ टी डबी वठी आयो आहियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी। सो तव्हां बि अगरि चाहियो था त तव्हांखे बहितरी ख़ूबसूरती मिले, त तव्हां बि वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, पोइ बाबा तव्हां पाण ई चवंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आहे।

हा भई छा अञा तोखे समझाया। इहे जेके माण्हू आहिनि न अॼुकल्ह टू फेसिस माण्हू, इन्हनि खे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि ॾाढी ख़र्च थींदी हूंदी, छो त हू ॿिन्ही चेहरनि ते लॻाईंदा हूंदा। अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो आहे त मूंखे ॿुधायो जल्दी जल्दी, जीअं असांखे ख़बर पई त बाबा तव्हां बि इस्तेमालु कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं तव्हां बि यकीन सुहिणा थी विया हूंदा। अच्छा, हिते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि त मैसेज तरफ़ अचूं था, पैनल जी तरफ़ अचूं था, त पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि, उन्हनि खे सभ खां पहिरीं पढ़ी वठूं। सभ खां पहिरियों जेको मूंखे मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अनवर अली बलोच फ्राम सोनाड़ी फ्राम। अच्छा, वो है जनाब, आपने टॉपिक का जवाब दिया है। अच्छा, वो कैसे हो सकता है भाई, बताएं मुझे जरा। और मकसूद मल्हा हमारे साथ है मेहरापुर से, कहते हैं कि हेलो सिदरा मुस्कान, आपका शो बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, आई लाइक योर शो, मुझे निगत नाज का गाना सुनाए। हाजिर हाजिर, इन गाने का निगत नाज जो गानो हलंदो। और चाचा खालिद हमारे साथ ही, तुम गाने की फरमाइश कई ओके चाचा। गोठ नबीदाद बम्बरो नारो खां इमाम रिनो बम्बरो भाई हमारे साथ है, भाजू मोहबतू आए तो असाजे प्रोग्राम में शामिल आयो। और ये बकर अली हमारे साथ हैं, बकर अली फ्रॉम केची, केची उन्नड़। सलाम सिदरा जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते आप ही आप कैसी हो। आज के टॉपिक का जवाब है दुख और दर्द। हाय अल्लाह, अच्छा हे भी माना गाने जी कठ थे या मां सोचा पे ये पांजो तसलाए जा तरकिया बाबा। ओके बकर अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ है पोएट्री अर्ज है, गरीबों की है, और गरीबों की राय और फर्क लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। फारक, अच्छा गरीबों की राय और फारक लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्यों भला नहीं लेनी चाहिए जयपाल भाई, आप बताइए मुझे जरा। फारक की तो समझ आती है, गरीबों की क्यों नहीं, ये बताइए जरा। और कहते हैं कि भाऊ अर्ज करते हैं, लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है जयपाल भाई। ओके ओके, समझ गए समझ गए। और कहते हैं अर्ज किया है भाऊ, उदास मत होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर तेरे आसपास हूँ, पलकों को बंद करके जब भी दिल से देखोगे मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जयपाल भाई कराची से मैं सुन रहे हैं, क्या बात है जयपाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज की है मैंने और मेरी फैमिली ने भी रिजल्ट ब्यूटीफुल मिला है। डेडिकेट आपको सॉन्ग फायजा अली फेवरेट सिंगर। ओके जी, फायजा का गाना आपको जरूर डेडिकेट कर देंगे क्योंकि आप और आपकी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है।

यको साल जी त खबर कोन्हे अलाए का थियो बाक़ी हाणे कुझु महीननि खां त असांजे प्रोग्राम में आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॿुधे पियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका इस्तेमाल बि करे पियो ॾियो हाल वाली आहे न बिल्कुल ईअं ई आहे अच्छा ये हमारे साथी अब्दुल्ला महर मीरपुर खास के डेडिकेट आपको फायजा अली का गाना जी जी भाई आपके लिए फायजा का गाना लगाते हैं और हमारे साथ है एस डी जेपाल हेलो आरजे भाऊ हाउ आर यू खुश रहें थैंक यू आप भी मेरे प्यारे भाई और कहते हैं भाऊ काम में हूँ नेक्स्ट ज्वाइन करूंगा शो एंजॉय ओके और ओके ओके बहुत शुक्रिया भाई जान एरम कहती है कि ओ माय डियर दिलबर दोस्त मुझे लग रहा है कि बस आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही हूँ समझ रही हैं तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमारे साथ ही हमारी फजली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट पेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो स्वीटी सलाम टू कायनात और सब सिस्टर्स को मैं लंच कर रही हूँ एंड आपका शो भी सुन रही हूँ लंच करें बिस्मिल्ला करें जी जी बिस्मिल्ला करें आप खाए पिए इंजॉय करें और वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह आप अच्छी कुकिंग करती हैं खाया नहीं लेकिन हाँ बता सकती हूँ

0: पंजो साल वाह साईवा वाह साईवा मयारूं हलन थियूं मां मयार ॾियां मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कोन कई अथव तव्हां ते त मयार ठहे बीहे थी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा इस्तेमाल करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया किशोर भाउ कहते की हल हू दौर हो माण्हू इशारो समझी वेंदा हुआ अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे तो जिनके नहीं मैं रीड कर सकूं तो आप जरा ऐसा कीजिएगा कि दोबारा अपना कमेंट पेस्ट कर लीजिएगा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अच्छा उनका अलावा वहीद वफाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी क्या हाल है आपके माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्राम जेका बाबा से आपके साथ हूँ बहुत शुक्रिया चाचा खालिद कहते हैं कि मुंह साहिर बगाजो गानो हा सुल्तान साहिर बगाजो गानो लाया था पर जेका तव्हां फरमाइश कई आहे न उहा एरिया त हुन खे लास्ट में ई लॻायो वञे सो तव्हांखे थोरो सबर करणो पवंदो फरवा तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे ओका
1: साल सदिए दे आहे बराबर पंजे सूरन जी मातो सा कया फिरी कई
0: हां भाई हां मुझे तवा चवण ते दवा न खाए जो बस मुझे चवण ते तवा प्रोडक्ट्स जो यूज करे सगो था जो त प्रोडक्ट्स जे बारे में तवा के जेका भी डिटेल दीनी आ वो सफा सही दीनी आ बाकी हां दवा जेका तवा डॉक्टर का पूछी करे खाइंदा गयो बाकी अगर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था त पोइ त वाह वाह आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुलु तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघूं था पर जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो त किथे किथे नथी मिले असां कहिड़ी ख़बर त भला किथे किथे अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे सो तव्हां बि इस्तेमाल कयो ऐं तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां कारी न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अजरा बहन,
3: जरा बात तो सुनो.
2: हटो पीछे, भागो.
4: अहमद, हटो वहाँ से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन्हीं जलाई छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी की लॉक करे आई चार रंग की खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन की घट कर आई रिंकल्स की घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बनाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन संगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
6: लाड़काने वासे लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारश वारा चरो पुरानो फट चित्री लैशमिनासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थन वारन जा मसला एलर्जी औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजी थो. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो. टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे तई आचर दे क्लिनिक बंद रहती. वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03124344689.
7: खुशखबरी, अल राफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अरे न, ख़ुश ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो? आउ पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं 4 रंग जूं खूबियूं जिंद मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे, सिर्फ 3 ॾींहनि में जिंद खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2331-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
6: सुनते रहो GFM 90.4।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।

जिंदगी ऐ जिंदगी तेरे फैसले बड़े सख्त ठहरे, जिन्हें अपना समझा वही अजनबी निकले, और जिनसे उम्मीद बांधी वही दिल तोड़ गए। हमने तो हर मोड़ पर तुझे खुश दिली से कबूल किया, मगर तूने हर मोड़ पर हमारे हिस्से में कोई नया दुख और कई नई आजमाइश लिख दी। कभी हालात ने तोड़ा, कभी अपनों ने, और कभी उन यादों ने जिन्हें हम चाह कर भी अपने दिल से जुदा न कर सके। हम मुस्कुराते रहे ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं एक शख्स रोज थोड़ा थोड़ा टूट पा रहा है, और जिन ख्वाबों को आंखों में सजाया था वक्त ने उन्हें हकीकत बनने से पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया। अब ना किसी से शिकवा है, ना किस्मत से कोई गिला, बस दिल चाहता है कि कुछ लम्हों के लिए ये जिंदगी अपनी तमाम शक्तियों समेत खामोश हो जाए। और ए जिंदगी, अगर यही तेरा दस्तूर रहा तो फिर इतना हौसला भी दे कि हम अपने टूटे हुए वजूद के साथ बाकी सफर तन्हा तय कर सके, क्योंकि किसी और को खोने की, किसी और को छोड़ने की अब हिम्मत नहीं रही।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही मतलब अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया. और हमारे पास एक और गाना मौजूद है जो कि होने वाला है जी मतलब एक अच्छे वाले सिंगर है, तो इनका हम गाना सुनेंगे. इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, अब सही है.

ओके जी, मोहब्बत न रही आ बाबा रही छा कजे दुनिया में रही छा कजे बाकी काडे वेंदो कोई भी वो प्लान ठायो है जबला। चलो खैर, यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

ओके जी, गाना तो अच्छा है, गाना अच्छा है, नो डाउट. और आप ऐसा कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा जानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तभी तो आपका दिल करेगा कि भाई हाँ मुझे भी लगानी चाहिए. क्योंकि वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाकर देख ली, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं इतना आखिर क्यों बताती हूँ. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चीज तो हो ही जाएगी कि भाई आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं. सबसे बेहतरीन बात की डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये फायदा तो आपको देगी कि भाई आपके चेहरे पर जितने भी ये टॉक्सिक से एक्ने आ जाते हैं या फिर ये बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो क्या आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बुरा असर छोड़ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों को भी खत्म कर देगा. और साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलता है परफेक्ट वाला निखार. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का ना एड किया गया है. ये आपको फेशियल का जो है ना वो रिजल्ट देने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं, आपके घरों में कोई शादियां हो रही हैं या फिर आप बाहर जाकर कोई महंगे से फेशियल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप घर बैठे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें, बस ये काफी हो जाएगा. और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही वाकई आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल करें उनके भाई बड़े अच्छे से हमें पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं, तो आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं जरूर से बताइएगा. उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा यहाँ भी खास गाल है, यह चीज मैं तक बुधाईदी हल छो तो कुछ मानू वो सोची ना हूं सिदरा जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाई थी, तो इन में फेशियल जी क्वालिटीज शामिल है. अगर तुम इस्तेमाल करना था तुम्हें फेशियल जो रिजल्ट मिल तो वो इस्तेमाल कर क्रीम लगाए कर मसाज कर इस्तेमाल कर. अगर तुम इस्तेमाल कर शुरू कर मसाज न कर ही नाइट क्रीम है, बाजार नाइट क्रीम है, पर अंदर जी चीजों थियल उसे रिजल्ट फेशियल वो डेण वाली है. तो जदी भी तुम कोई भी नाइट क्रीम जो इस्तेमाल करो, तो उनके तुम सिर्फ आराम से पानी उंगलियों की मदद से लगाईंदा रहो. ये लगाया क्रीम थोड़ी तुम्हारे चेहरे से नजर अचे, छो तो कुछ मानू वरी लगाए छा सफा क्रीम जी वो जज्ब कराईंदा स्किन के अंदर, तो स्किन के अंदर क्रीम जज्ब न करायो वह पान जज्ब थी वेंदी, तुम्हारी स्किन से सफा भला रिजल्ट छे डींदी. तो अगर तुम ये सब चीजों का अवॉइड कर मसाज भी था स्किन से स्किन के अंदर क्रीम के जज्ब भी करायो था, तो जाहिर गाल तुम्हें रिजल्ट न मिली सकता जो तुम्हें हासिल करना चाहो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार से सुकून से लगाए राजे टाइम से लगाए लगाने का पैर पानी फेस वॉश कर डी स्किन फेस वॉश उनका जी तुम्हारा तो तुम्हें सफा भला रिजल्ट मिली चुका हूँ. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है डी स्किन जो फेस वॉश है ट्राई कंदा रहो हमेशा जलाए पाजे खूबसूरत से चेहरे के मजीद खूबसूरत बनाए छो. उनका अलावा असने प्रोग्राम की लास्ट लिंक है बाबा डाढ़ो भलो अस गानो बुधोसी हिड़ो ट्रिक है जिनकी असि अलीशा फरमाइश कई है जो गानो अस बुधोसी उनकी फरमाइश अस किशोर भाई कई हुई जो उनका पेरी बुधो सी ना की चाची जी फरमाइश थे हो. सो अमां जो बिल्कुल फरमाइशू आन लिस्ट फुल थी वही है बाबा हाँ गाना हारजन था सो अधिक को भी गाने जी फरमाइश न करे.

बिल्कुल सी आपके कमेंट्स और मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। टाइम बहुत थोड़ा जाके बचा है। यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि दा सुबाने फेस वॉश वठंदस लाड़काने माँ जी बिल्कुल तुम फेस वॉश वठ जो लाड़काने में तुम्हें आराम से मिली वेंदी आई अच्छा रमजान भाई हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुश आमदीद कल परसों आपका गाना लगाया तो था और फरवा कहते हैं ओके ओके फरवा बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और रमजान भाई लिखते हैं कि दिल उदास हो तो बात कर लेना दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना हम रहते हैं आपके दिल में वक्त मिले तो तलाश कर लेना ओके भा ओके और कहते हैं प्लीज सॉन्ग प्ले करना भा हाजिर टाइम बची तो हलाई बैठू था और ये हमारे साथ है अब्बास के साथ अब्बासी भाई लिखते हैं कि मुस्कान देर इज मैजिक इन योर स्माइल व्हेन यू स्माइल माय होल डे बिकम ब्यूटीफुल ओके ओके और उनके अलावा अलीशा हाँ ठीक है अलीशा तुम पांजो गानों एंजॉय करो।

0: No. अच्छा है, अब खड़ू ही मरी राज भवंदा बाबा बला मुहण खण सतगुरु को बला मुहण खण कहरी न न न न बाबा ये न खण तू अब खड़ू ही मरी राज भवंदा ये न खण तू अब खड़ू ही मरी राज भवंदा वाह साईं वाह वाह साईं वाह इरम हमारे साथ है बहुत शुक्रिया इरम अल्लाह साईं तमाम जी जिंदगी में आसानियों आने हैं अल्लाह करी तमाम खुशियों माने सही आ और गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्लाह थेबू कहते हैं तमाम जो शो वेरी नाइस आई सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा तमाम जो तमाम जा सब प्रोग्राम भला है अच्छा मुझा तो सब प्रोग्राम भला है पर तमाम पांजो नालो तो लिखियो को ना के रस से गड मौजूद आयो नालो पांजो लिखना कयो अब्दुल सतार बमरू भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सतार भाई लिखते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज थैंक यू परवा कहती हैं आप भी तो हमारी डॉक्टर है ना आप दो घंटे क्रीम के बारे में बताते हो वो भी बगैर फीस के देख लें बस आप इस्तेमाल करें तो आपको पता चले कि ये आपको दो घंटे में क्यों बताते हैं क्योंकि भाई डी स्किन प्यूरी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सदरा इतना क्यों बताती है डी स्किन प्यूरी क्रीम के बारे में अच्छा जवार मोहम्मद बचल चंबानी भाई हमारे साथ हाँ ही जलाल चांडियो साहब है अच्छा मोहम्मद जमान भाई आपने बोला तो सही कि भाई आज हमारी भी फरमाइश है लेकिन आपने गाना आकर ठक लास्ट लिंक में शेयर कर दिया तो ऐसा है कि जब आप फरमाइश करें तो स्टार्टिंग में ही अपना गाना लिख दिया करें भेज दिया करें ताकि वो हम प्रोग्राम में ना जब भी मुझे टाइम मिले तो आपके लिए गाना लगा सके तो अब ये जो आपने लिंक शेयर कर दी मुझे लास्ट में इस गाने को हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे नहीं तो फिर हम कल वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे ठीक हो गया दर्द दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो और कहती हैं कि
1: लबड़न ते यहाँ लाली यार कहीं जो
0: अच्छा उनका अलावा शायरी मोकलिया चाहती हाय बहुत प्यारी पोइट्री चंदा थैंक यू वेरी मच फहीम कहते वाह वाह अदा तू भी ऐसा मांग बिल्कुल ही है यार और ये दर्द दिल कहती है आज लेट हो गई थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा वाकई आपको लेट हो गई और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि आज फिर की थी मोहब्बत से तौबा आज फिर तेरी तस्वीर देखकर इरादा बदल गया क्या बात है जी क्या बात है और चाचा कहते हैं थैंक्स फॉर सॉन्ग भाई आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और बलोच के कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं अल्लाह जाए बुदा कसम दे जमशेद फारूकी हमारे साथ हैं कहते हैं प्यारी मरियम फारूक और फारूकी जारिश शहमीर और मुजफ्फरगढ़ से आप हमारे साथ मौजूद है सबको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं जी बहुत शुक्रिया के साथ हाँ बाबा असा के गानों बुधी भी मजो अची हाँ असा लिस्ट में जो लास्ट ट्रेक आ वो बुधी वेठू था सो बिल्कुल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको जो प्रोग्राम के अंदर नंबर बताया जाता है उसके ऊपर रابطہ किया करें रابطہ करेंगे तो भाई साहब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आप नंबर के ऊपर रابطہ कर लेंगे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे उन्हें बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन फेस वॉश तो वो अवेलेबल करा देंगे तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन

दर्द दिल पे वही बोल रही है ना ना ना ना ना। अच्छा था। और बशीर बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप हमें सुन रहे हैं कराची कायदाबाद से, बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम। ओके, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, थैंक यू वेरी मच कहते हैं। जी जलाल जी, जी जी ना ना ना ना बोले। किशोर भाई कहते हैं अदा तू जा पंज बजे अरे प्रोग्राम जी पोस्ट ते कुछ लिखी भी न था सगू हाँ हाँ बिल्कुल ही आहे पहले थोड़ो ये हो तो थोड़ो देर सा भी बंद थी हाँ तो वरी डियो डियो जो है सफा अगते थी तो अच्छे टाइम लगे तो मुके तो एक वरी टाइम इंदो जदी पोस्ट ही अपलोड करना सी तो उन टाइम में बस बंद थी वेंदी।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए। और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत, क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। और शबीन जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी तो पैनल पर सारे मैसेजेस ही तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को यूज करते रहिएगा। कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह, जिनके फीडबैक रह चुके, जिनके गाने रह चुके, सबसे माजरत। सुमोकलानी नाहे बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: शहादत पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज भारतीय नाज़िम महमूद परले याफिस तलब एहतजाज जी खत भी दिनो वयो हथे खाली शहरन के दर अंदाज करार देण वारे भारतीय कोशिश भी रद्द वाक्यो बुनियादी इंसानी हकन ए हक जिंदगी जी संगीन भनकड़ी करार भारत का जिम्मेवार बॉर्डर फोर्स के अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो पर खाते मौजूद भारत बॉर्डर फोर्स हथी खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरन के शहीद कयो भारत बुनियादी इंसानी हकन ए आर्मी कानून की पासदारी यकीनी बनाए हथे खाली शहरन ते बिना जवाज ए चिड़ डियारींदड़ ताकत इस्तेमाल कई वही अड़न वाक्यन के रोकण लाओ पाव वरता वन वफाकी गरू वजीर मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात गुजरियल ढी अपोजिशन से थियल गालिन बाबत आगाह कयो जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी की मुलाकात तकरीबन डेढ़ कलाक जारी रही वजीर आजम अपोजिशन से गालिन बाबत मोहसिन नकवी के हिदायतू भी डिन्यू

0: पार्टी आहे लॉन्ग मार्च जो सर वापसि वठंदी या हुकूमत अपोज़िशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो ऐं फैसलाइतो दौरु कुझु देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर सादिक जी ज़ारत हेठि थींदड़ हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी ॻाल्हियुनि में ॿई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं बि रिहाई ऐं लॉन्ग मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमी हुसैन खां लातालकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परदेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परदेही मीडिया मूजिबि ईरानी तनक़ीद ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। रतो देरो में हथियारबंदनि जे पंज ॼणा कतल मारिजी वेलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल आहिनि। बिलावल गांगरो ऐं बाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाक बणजी विया। पुलिस जो चवण आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जे मारिजी वयल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
7: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
12: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
13: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
9: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
11: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03125252586।
10: जी हा, 2315525786।
11: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में बिन पाकिस्तानियुनि जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। भारतीय नज़्म मज़बूत परडे॒ही आफ़ीस तलब एहतजाज जी ख़त बि डि॒नो वियो। हथे ख़ाली शहरनि खे दर अंदाज़ करार डि॒यण वारे भारतीय कोशिश बि रद्द। वाकियो बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक़ ज़िंदगी जी संगीन भञकड़ी करार। भारत खां ज़िमेवार बॉर्डर फोर्स जे अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। परडे॒ही खाते मूजिब भारत बॉर्डर फोर्स हथी ख़ाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरनि खे शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए हथे ख़ाली शहरनि ते बिना जवाज़ ऐं चिट ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाकियनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। गुज़िरियल ॾींहुं अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो। ज़रियनि मूजिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात तक़रीबन ॾेढ कलाक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि बाबति मोहसिन नक़वी खे हिदायतूं बि डि॒नियूं।

0: थी आहे। लॉन मार्च जो सर वापसि वठंदी या हुकूमत अपोज़िशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि जो बि॒यो ऐं फ़ैसिलाइतो दौर कुझु देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर आया सादिक जी इदारत हेठि थींदड़ हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी ॻाल्हियुनि में ॿई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं पीटीआई खे लॉन मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमी हुसैन खां लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परदेही मीडिया मूजिबि ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे।
1: दुश्मनी असांजी हुजे हा त प्लस में असां सरियाम जेका बि रोड ते कारोबार न कयूं। असांजो वाजबी आहे, कोड़ो बि न कयो। हुन सां मुतालबो आहे त असांजा को खपे न खपे।
0: रतो देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग। पंज ॼणा क़तल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल आहिनि। बिलावल गांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाद बणिजी विया। पुलिस जो चवण आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके में बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माश्किल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था। गंभट में 3 ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। मक़तूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो आहे त मुंहिंजे पुट खे नौकरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज। बणियल रादड़ में चिमची रक्षा ड्राइवरनि हलाईंदड़ रैली कढी ऐं धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंची ड्राइवरनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीतो वाद सबबि असांजे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस जे नाहेली ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहं बि एहतजाज जारी। ज़िलो सिंगारियो जिदोजहद कमेटी ऐं शहरनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त कंबर पुलिस जी नाहेली सबबि समूरो ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। रोज़ धाड़ा फुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणियल आहिनि। आई जी सिंध अमुन बहाल कराए। फिरोज़ में जेल पुलिस ऐं सेप्को अमलदारनि विच में लोड शेडिंग तां तकरार। सेप्को जा लाइनमैन जेल मुंतकिल। मिठाणी रोड ते डी फिटिंग वटि जेल पुलिस पहुची सेप्को जे लाइनमैननि खे खणी जेल मुंतकिल करे छॾियो। जेल सुप्रिटेंडेंट अबू बकर मंगी जो चवण आहे त जेल में अथरादू लोड शेडिंग कई पई वञे। बार बार रोकण बावजूद सेप्को जा मुलाज़िम गेट स्टेशन तां लोड शेडिंग करण बदिरां जेल जी डी फिटिंग लाहे वञनि था। सेप्को मुलाज़िमनि जो जेल इंतिज़ामिया ते हिसाइण जो इल्ज़ाम। मेहड़ में साफ़ पाणी जी फरहमी न थियणु गंदगीअ जे आज़ार ख़िलाफ़ एहतजाज। GDA, PTI, क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि पारां 20 ॾींहं में दुआ चौक खां घंटाघर चौक ताईं रैली कढी वई आहे। अॻवाणनि चयो आहे त मेहड़ में साफ़ पाणी जी फरहमी नाहे, गंदगीअ जे आज़ार आहिनि। रोड रस्ता उखड़ियल आहिनि। अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: आप सुन रहे हैं
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578 6
7: जी हाँ 3135525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2131-2525-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज।
6: हाय हाय हाय।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कराची जे नाह अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।

सतो देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल। पोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल। बिलावल गांगरो ऐं वाटाड़ो अब्दुल्ला फिरोई बि गोलियुनि जो बुख बणिया। पुलिस चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारिजे वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरिसां ॻोठ वॾापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
6: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125257 86
7: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

ठंडा ठंडा सा मौसम भी आ चुका है और आज का मेरा अच्छा सा टॉपिक है कि अच्छा टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर हम उस टॉपिक पर बात भी करेंगे क्या वहाँ की ही ये टॉपिक है। वैसे तो मेरा कुछ और था लेकिन मुझे फिर ये जहन में आया किसी वजह से, तो मैंने कहा जिसको क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए इस बात को। तो जी बिल्कुल, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते। अब इससे आपके माइंड में क्या बात आती है आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तब तक हम थोड़ी अक्टूबर को वेलकम कर लेते हैं, अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर की पहली शाम हमारे शो की है तो हमें अक्टूबर के नाम कर देते हैं चलें ये शाम की। तो जी अक्टूबर की शाम है, देखे ना मौसम भी बदला सा हो चुका है, बिल्कुल मौसम बदल चुका है अक्टूबर पे। ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी शाम आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि आती सर्दियां और जाती गर्मियों का मौसम है, गर्मी को करें बाय बाय, सर्दी को करें वेलकम। तो जिस तरीके से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें आप लोगों से करेंगे, क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कैसे गुजरेगा। और बात हमारी बातें तो रौनक है प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो आप लोगों की बातें शामिल होंगी तो प्रोग्राम भी हमारा आगे बढ़ेगा। अब आप लोग भी जल्दी से आ जाएं और मैं भी आ चुकी हूँ। तो जी अब शाम का ठंडा ठंडा सा टाइम है, ये कोई सर्दी गर्मी नहीं है, ठंडा ठंडा टाइम है। थोड़ी थोड़ी सी खुनकी से आ चुकी है हवा में, ठंडी ठंडी से अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और आप लोगों के साथ होती रहती है सारी बातें। चाय का एक कप उठा लीजिएगा साथ, हवा देती हुई चाय का कप, क्योंकि मेरी चाय भी थोड़ी देर में आ जाएगी। ये बिल्कुल, और मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोग को ये अब अक्टूबर की जो शामें बदल चुकी हैं, दिन बदल चुके हैं, रातें बदल चुकी हैं, तो घर के हालात भी बदल चुके हैं। मतलब कि पहले तो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल, अक्सर लोग गर्मी है गर्म दिमाग हो, लेकिन अब तो ठंडे मिजाज के हो जाएंगे, ठंडा ठंडा मौसम आ चुका है। तो अब हर घर में ये एक सिलसिला चलता है, कोई बोलता है फैन ऑफ कर दो, कोई कहता है ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो। मतलब ये कि सुबह फैन ऑन होता है, दोपहर में एसी ऑन हो जाता है, शाम में फिर फैन ऑन हो जाता है। तो आपके घर में भी क्या यही सिलसिला चल रहा है जो आजकल अब हर घर में पाकिस्तान में चल रहा होगा। सर हमारे सिटी का मौसम काफी चेंज हो चुका है, अच्छा हो चुका है। तो इसी के साथ एक अच्छा सा सॉन्ग भी प्ले करते हैं, फिर बातें शायद आप लोगों के साथ करते रहेंगे। तो जी फर्स्ट जो सॉन्ग है मैं प्ले करने जा रही हूँ, जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज में मैंने प्ले किया है, ना तू आएगी। तो जी शायद ये सर्दी को बुला, लेकिन सर्दी तो आ चुकी है, चलें जी हम भी इनके साथ इंजॉय करते हैं। हम लोग सर्दी को पूरी गर्मी याद कर रहे थे ना, वो आ गई है, चलें जी इंजॉय करें। आवाज के रिश्ते में मैंने पहली जो है सॉन्ग, पहला आवाज, पहली जो सॉन्ग है वो मैंने आवाज शामिल कर दी है जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। आजा भाई आजा सर्दियाँ।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: अज़रा बहन, जरा बात तो सुनो.
6: हटो भी, भागो.
5: अहमद, हटो वहां से.
7: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें.
8: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम. यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
9: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे. ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287. ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी.
10: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल.
10: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
12: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी.
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हाँ, 2315-2576।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
6: पसंद किया इसके साथ ही इस जिले से हमारे साथ हैं कॉलिक लाशारी। ये कहते हैं कि शो में सॉन्ग सुना दें फौजिया सुमरो का। अच्छा जी, बिल्कुल, मैं फौजिया सुमरो का जो शो शामिल करती हूँ आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। इन्होंने शायद सॉन्ग लिखकर भेजा, तो मैंने दूसरा सॉन्ग निकाल लिया था। चलें जी, मैं फिर वो सॉन्ग जो शामिल करके आपका प्रोग्राम में यहाँ पर प्ले जरूर करूंगी इस सॉन्ग के बाद, क्योंकि मुझे वो सर्च करना पड़ेगा आपके लिए। तो इससे पहले तब तक आप लोग फौजिया सुमरो की जगह फैज़ा अली को इंजॉय कर लें, या फिर फैज़ा अली को इंजॉय कर लें आप लोग तब तक। इसके बाद फिर मैं एक और सॉन्ग सुनाती हूँ आप लोगों को। फैज़ा अली का तो आप लोग जानते ही हैं, और इनके सॉन्ग की म्यूजिक से पता चल जाएगा आपको ये कौन सा सॉन्ग है। ये बिल्कुल रब जाने, बेशक रब ही सब जानता है। इसके बाद मैं कुछ कमेंट भी शामिल करूंगी, और हमारी एक नज़्म है अच्छी सी, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो भी प्रोग्राम में।

पुराने दिन याद आ जाते हैं। किसी सड़क पर चलते हुए गुजरे लम्हे साथ चलने लगते हैं। कुछ रास्तों पर हंसी गूंजती हुई नजर आती है, कुछ पर खामोशी का गुजर होता है। लोग बदले मगर रास्ते वही रहते हैं, और जब कभी फिर उसी रास्ते से गुजरना हो तो एक लम्हा ऐसा लगता है वक्त इधर ही कहीं बिछड़ा हुआ हो, वहीं रुक जाए या रुक गया हो। शायद इसीलिए कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो हमारी जिंदगी के वो बाप होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पाते। जी बिल्कुल, लिसनर्स यही बात।

ओके जी, लिसनर्स के साथ ही हमारे एक और लिसनर्स हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने लड़का ना से हमें ज्वाइन किया है, ये कहते हैं गुड इवनिंग हाय हाउ आर यू, तो जी शो इज वेरी नाइस, जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अली का ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी

आप लोग जो है जब भी मतलब मैसेजेस करें चाहे 888-1 पर खास करके जब भी आप लोग करें ना तो आप लोग जो है ना प्रोग्राम का नाम या होस्ट का नाम लाजमी लिखा करें ताकि फिर वो हमें शामिल करने में भी आसानी रहती है। ओके जी, इसके साथ ही प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 5:58, यानी बस अब एक घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला कैसे टाइम गुजर जाता है। तो जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ रास्ते रास्ते नहीं होते, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप लोग कैसे जो है इस शाम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, यानी कि मजे ही मजे हैं और खासकर स्कूल भी ऑफ होते हैं। ये देखें सैटरडे संडे स्कूल भी बंद, कभी कभी जो बच्चों ने दुआएं हमारी मांगी हुई थी वो आज कबूल हो रही। कभी कभी होता था बचपन में क्या आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज नहीं जाए, तो दुआएं उस अब कबूल हो रही हैं। अच्छा कौन कौन ये दुआएं मांगता था, तो ये हम इसे बात करेंगे किसी दिन, इस टॉपिक को भी बात करते हैं, अच्छा सा टॉपिक इसी भी देखिए यादें व्यवस्था देंगे आपके स्कूल का टाइम आपको याद आने लगेगा। तो जी बिल्कुल, अब टाइम तो बहुत शॉर्ट नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास भाई, पर मैं ये कहने वाली थी कि अभी टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 6 PM हो जाएंगे और मुझे एक लेना होगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन सबसे पहले न्यूज ब्रेक भी होता है जो मैं लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी खबर से बाखबर रखना है, हमें आपको पता चले कि और क्या क्या चल रहा है।

0: जी बिल्कुल, इस वक्त टाइम हो चुका है 6 PM और हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं आवाज का रिश्ता।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: 44 सालों जो तजुर्बो, हजारे मरीजों जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालों जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश, ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहा है ने। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326 22 00 440।

0: छा तव्हां जो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है।
5: करती हो? मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-295-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252586।
3: जी हा, 3135525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

और गुड इवनिंग लिसनर्स, तो टाइम हो चुका है इस वक्त 6:29 यानी 6:30 होने वाले कुछ 20 सेकंड जा रहे हैं, तो जो बिल्कुल अब प्रोग्राम में टाइम हो गया आवाज के, इसलिए मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का जाने के साथ ही मैं ब्रेक लूंगी और इसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी आवाज का रिश्ता, एक खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत सी आवाज है।

0: It's 6:30 p.m. This
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अरे खुश्क और बीरोनकी स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहन चार रंग की खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे एंड चार रंग की खूबियों जिंद में फाइन लाइन एंड झिरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ टीहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनका जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा आवा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
3: जी हाँ, 3135-5576।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।

0: ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2131-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़
7: करो छो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 and 0312-1401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है दहशतगर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशतगर्दों पे काबू नहीं हो सकते उसके बाद उस दहशतगर्दी का असरात हमारा शहर कराची पे हो तो इसलिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता चाहते ही है कि हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत अपने पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कुछ पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना ज़हन बना दिया था और फौरी तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौरी तौर पर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका आप अभी पता नहीं 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, वो साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शायद जाना पड़े। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
5: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वियो हो असा वफाकी हुकूमत के गाल लाए राजी क्यों केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न डिनी ए वफाक सा सरकार न कहो तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वंजनो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रो है, 10 दिन का शहर बंद है, केपी में दहशतगर्दी वधी रही है, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज से है, केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे बाबत वफाक से मुआहदो करे, अफगानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ है, बलोचिस्तान जो भी हालतूं ठीक ना हैं, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी जा असर सिंध ते भी पैजी रहा हैं, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, उम्मीद है इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमातूं मसले जो सियासी हल कढंदियूं।
4: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट थे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक सतोला सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें इस वक्त कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है। आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये असासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी है। केफ्रो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फो की मंसूबा में अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। पूरे मुल्क में वोटों पर बन सकता है लेकिन किसी वजह से हैदराबाद फकर की बात आती है तो वो मोटो वे बन नहीं सकता, वो बात ने वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तनकीद हैं उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहें, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ करें।
5: सिंध के कदें भी मायदे मौजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरे सिंध पानी खोट के मुंह दे रही है, अपा कराची सां मचली माह वारो सलूक कयो आहे। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जी इफ्तिताही तकरीब खे खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त जेकॾहिं शहबाज स्पीड जी कंहिं रिथा खे ज़रूरत आहे त उहा केफो रिथा आहे। सूबाई हुकूमत सुठो कम करे रही आहे। सिंध में सियासी गंद खे पंहिंजी कारकर्दगीअ सां साफ़ कंदासीं। भारती बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में ॿिन पाकिस्तानियुनि जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। भारतीय नाज़िम उमूर परडेही आफिस तरफ एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो। हथे ख़ाली शहरियुनि खे दर अंदाज करार ॾियण वारी भारतीय कोशिश बि रद्द। वाकियो बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक़ ज़िंदगी जी संगीन बेदखड़ी करार। भारत खां ज़िमेवार बॉर्डर फोर्स जे अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। परडेही खाते मूजिब भारतीय बॉर्डर फोर्स हथे ख़ाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियुनि खे शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए हथे ख़ाली शहरियुनि ते बिना जवाज़ ऐं चिड़ ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाक्यनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जी जिनाह अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।
6: आप
2: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
7: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सुबह

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जी बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हाँ 2315525786
3: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं कदम।
4: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि एमपीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वो हो असा पाक की हुकूमत के गाले लाए राजी कयो केपी हुकूमत दहशतगर्दी वारे मसले के अहमियत न डिनी वफाक सा सरकार न कयो तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वञणो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रहो है, 10 दिन का शहर बंद है, केपी में दहशतगर्दी वधी रही है, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज ते है, केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे बाबत वफाक से मुआहदो करे, अफगानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ है, बलोचिस्तान जो भी हालतू ठीक ना हैं, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी के असर सिंध ते भी पेड़ी रहा है, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, उम्मीद है इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमायतू मसले जो सियासी हल कढ़ंद।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट थे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर को इस शहर कराची को पानी के किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक 17 सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये असासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं। केफो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फोक की मंसूबा में अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। पूरी मुल्क में वो तो वे बन सकता है लेकिन किसी वजह से अगर फकर की बात आती है तो वो मोटो वे बन नहीं सकता, वो फात ने वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तनकीद है उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ करें।
2: सिंध के कदें भी मुआदे मूजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरी सिंध पानी खोट के मुंह दे रही है, वफाक कराची से माटली माओ वालों सलूक कयो है। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो चवण हो तो जैसे शाहबाज स्पीड की कह रिथा की जरूरत है तो वह केफो रिथा है, सूबाई हुकूमत सुठो कम कर रही है, सिंध में सियासी गंद के पैं ही कारकर्दगी से साफ कंदासी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
5: जी हा 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-25-7786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।